अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर प्रभु श्री कृष्ण की भागमें छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज। पावन मंगलमय वेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं आप लोगों का स्नेही जितेंद्र पारासर और अभी आप रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात में ऋषि पंचमी व्रत कथा को। बड़े आनंद चित्त होकर के अपने जीवन में जो भी पाप ताप संताप होते हैं इसे परिष्कृत करने के लिए हमारी माताएं ऋषि पंचमी व्रत को बड़े आनंद के साथ करते हैं। सप्त ऋषियों का पूजन करके यथाभक्ति शक्ति के अनुसार जो भी वस्तुएं होती है उसे समर्पित करके पुण्य के भागी बनते हैं। आइए हम सब मिलकर के भविष्य पुराण से लिया हुआ यह ऋषि पंचमी व्रत कथा को हम सब मिलकर के श्रवण करें।

एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था कि हे देवेश, ये सब पाप ताप संताप कैसे समाप्त होते हैं? जीवन में जाने अनजाने में पाप ताप संताप तो होते रहते हैं, लेकिन समाप्त कैसे होता है? वो पंचमी कैसी है? ऋषि पंचमी नाम, उसकी संज्ञा कैसे प्राप्त हुआ? किस तरह स्त्रियां सभी पापों को दूर कर लेती है, समाप्त कर लेती है, सो हम सुनना चाह रहे हैं। आप कृपा पूर्वक बतलाइए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं, अनेक प्रकार के पाप हैं जीवन में। इस व्रत को करके और स्त्रियां किस प्रकार से मुक्त हो जाती हैं? भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंदित हुए। तूने सिर्फ ये प्रश्न अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए तूने प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंदित हो गए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, राजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में जो भी बर्तन या स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त करती है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्य नरक में ही जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किस प्रकार से राजस्वला स्त्री को गृह में निषेध किया गया है।

इतने दिन तक गृह कार्य के लिए किस प्रकार से निषेध किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र राजस्वला स्त्री को घर के स्पर्श से दूर ही रखें। कहा कि ये है क्या रजस्वला, ये है क्या? उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व समय में वृत्रासुर को मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या को प्राप्त हो गई। धर्मराज के पास में गए, उस हत्या से दुखी होकर के इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के पास गए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान करके प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। वो जो ब्रह्म हत्या लगा हुआ था उसको ब्रह्मा जी महाराज शुद्धि कर दिए। और इतना ही नहीं, उस ब्रह्म हत्या को उन्होंने चार भाग में विभाजन किया, चार जगह पे विभाजन किए ब्रह्मा जी महाराज। प्रथम भाग जो है अग्नि के प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग जो है नदी के प्रथम जल में, और तृतीय भाग पर्वत पे, और चतुर्थ भाग स्त्रियों के रज में उन्होंने विभाजन कर दिया। ये ब्रह्म हत्या जो है चार भाग में विभाजन कर दिए। ये ब्रह्म हत्या जो है, जो स्त्रियों को चार दिन के लिए अशुद्धावस्था आता है, ब्रह्मा जी ने एक भाग उसमें भी दिया ब्रह्म हत्या का। ब्रह्मा जी महाराज का यह आज्ञा है कि चतुर्थ वर्ण को उचित है कि रजस्वला स्त्री को सदा दूर ही रखें। कहा इनका स्वरूप क्या होता है, तो प्रथम दिन अशुद्धावस्था में ये रजस्वला चंडावलिनी होती है, और द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी होती है, तृतीय दिन धोबिन होती है, और चतुर्थ दिन जाकर के पवित्र हो जाती है। ऐसे इस व्रत में चतुर्थ दिन तक अशुद्धावस्था बतलाया, स्त्रियों के लिए जो अशुद्धावस्था आता है चार दिन के लिए आता है, उसके बाद में पवित्र हो जाती है। महाराज उस वक्त ज्ञाना अवस्था में, यानी जान करके या अनजान से यदि स्पर्श किया जाता है उसे पाप लगता है। उस पाप ताप संताप को नष्ट करने के लिए ऋषि पंचमी व्रत को अवश्य करना चाहिए, जो सभी पापों को दूर करके, उपद्रवों को नाश करके, समाप्त करके ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां अवश्य करें। युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं, क्या इसका पुराणतम कोई कथा? कहा कि हां, एक इतिहास में बता रहा हूं, उसे तुम श्रवण करो, उसे तुम सुनो।

0: पुरा कृत युगे राजा विदर्भायां बभूवः।
1: एक इतिहास बता रहे हैं
2: क्या
1: कि पूर्व शतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुए, सेनजीत ब्राह्मण आदि सबको बड़ी रक्षा करते थे। उनके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण थे, उनका नाम सुमित्र था और वह सभी प्राणियों के हित के लिए दिन रात अपने जजमनका में घूमते थे, अपने कुटुंब का पालन करते थे। उनकी पत्नी का नाम जयश्री था, बड़ी साध्वी, पति परायणा, सुहृदजनों की सेवा करने वाली। महाराज एक दिन की बात है, बड़े चिंतातुर होकर के सेवा कर रही थी, बड़ी दुखी मन से सेवा कर रही थी। ऋतुमती हुई देख करके भी, रजो धर्म युक्त होने पर भी गृह कार्य को करती रही। अशुद्धावस्था आया तब भी वे अपने घर के कार्य करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त करने के पश्चात उसने घर का कार्य करती रही। उसने बर्तन को भी स्पर्श किया। बहुत काल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बहुत काल के बाद जयश्री की मृत्यु हो गई। पति के कालवश परलोक प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह से स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए और जो भार्या जयश्री थी, राजस्वला संपर्क दोष के कारण से उनका अगला जो जन्म मिला वह कुतिया बनी और जो सुमित्र उनका पति थे, सिर्फ स्पर्श के दो मात्र से उनको बैल पड़ना पड़ा, वो बैल बने। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वशभूत हो गए, जीवन चलाना प्रारंभ किए। त्रियक जोनी को प्राप्त हो गए महाराज। अपनी जाति का स्मरण हुआ उस धर्म के बदौलत। हुआ क्या कि अपने पुत्र के ही घर में बैल बने और जो कुतिया बनी उनकी मां उनके ही दरवाजे पर रहती थी। जन्म के पाप का स्मरण हुआ। जो सुमित्र थे ब्राह्मण देव, उनके बेटे का नाम था सुमित्र। अपने गुरु की बड़े सेवा करते थे, बड़ों का आदर सम्मान करते थे, धर्म परायण आते थे, अतिथि का सेवा करते थे, सत्कार करते थे। जो भी घर में आ जाता सबको सत्कार करते थे, सबका सम्मान करते थे। एक दिन उनके पिता जो मर गए थे, अब उनको क्या पता कि मेरे पिता ही बैल जोनी को प्राप्त करके मेरे घर में रह रहे हैं, उनको पता नहीं था। उन्हीं की संबत तिथि आई, श्राद्ध तिथि आई। बड़े उल्लास होकर कि अपने पिता के उस श्राद्ध तिथि पे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, अपनी पत्नी से कहे कि काम करो तुम, तत्काल ही खूब अच्छे से सबको व्यवस्थित करके और ब्राह्मण भोजन के लिए तुम व्यवस्थित करो, पकवान तैयार करो, ब्राह्मण देवलोक को जाकर के हम निमंत्रण आदि करके आ रहे हैं। मेरे पिताजी का श्राद्ध तिथि है ना, ब्राह्मणों को जिमाया जाएगा, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, तुम जाकर के अच्छे से पकवान तैयार करो। उनकी पत्नी सुनी और पकवान तैयार करना प्रारंभ किया। उनकी पत्नी का नाम चंद्रावती था। हुआ क्या, वो कुतिया जो इनकी सासू मां थी वो सामने में बैठी थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ब्राह्मण देव आने वाले हैं भोजन करने के लिए, उसी वक्त खीर को बड़े सुंदर से निकाल करके थाली में सजा दी कि ब्राह्मण देव आएंगे और आकर के बड़े प्रेम भाव से इससे भोजन ग्रहण करेंगे। क्यों, मेरे ससुर जी का आज श्राद्ध तिथि है ना, बड़ी श्रद्धा है मन में,
0: और श्रद्धा से ही श्राद्ध कर्म होता है।
1: बड़ी श्रद्धा के साथ सुमित भी गया ब्राह्मण के समक्ष, जाकर के कहा कि आप लोग मेरी निमंत्रणा को स्वीकार करिए, मेरे घर चलिए, भोजन को ग्रहण करिए।
0: ब्राह्मण देव निमंत्रणा को स्वीकार किए, उधर से ब्राह्मण देव चले।
1: इधर चंद्रावती बड़े सुंदर से खीर को निकाली, उसी वक्त
0: एक सर्प ने ऊपर से 20 उस खीर में डाल दिया,
1: उगल दिया 20। और जैसे ही उस 20 को उगलते हुए उस कुतिया ने देखी, स्मरण था, पूर्व जन्म का स्मरण था, उसने कहना प्रारंभ किया कि यदि इसे ब्राह्मण लोग खाएंगे तो मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और मैं देख करके चुप रह जाऊं तो यह मेरे लिए उचित नहीं है। जीवन में थोड़े से चूक हो गए, ये कुतिया का जोनी प्राप्त हुआ। आज मुझसे ब्राह्मण सामने में ब्राह्मण का हत्या हो जाएगा तो पता नहीं मुझे कितने दिन तक यह भोगना पड़ेगा, यह पता नहीं है। उस कुतिया ने जाकर के, अभी चंद्रावती आ ही रही थी, उस कुतिया ने जाकर के खीर के उस पात्र में उस कुतिया ने मुख को डाल दिया, मुख लगा दी, जूठा कर दी। उधर से जब चंद्रावती आई, महाराज पके हुए पकवान को देख करके कुतिया ने मुख लगा दिया, स्पर्श कर दिया। अब इस कुत्ते के जूठ को मैं ब्राह्मण को कैसे भोजन करा सकती, बड़ा गुस्सा आया। बड़े प्रेम भाव से खटकर के उन्होंने पकवान को तैयार किया था और कुत्ते जूठ कर दे, ये तो अच्छी बात नहीं। उनको गुस्सा आया और जलते हुए लकड़ी को लेकर के उन्होंने उस कुत्ते को कमर के ऊपर प्रहार किए, मारे। महाराज मानो की कमर टूट गया हो। कुतिया चिल्लाकर भागी वहां से, सबको, सब बर्तन को जो है पकवान को उन्होंने सबको ले जाकर के भीग दिया और पुनः सफाई करके और पुनः खीर को उन्होंने बनाया, पकवान तैयार की। महाराज चंद्रावती इतने गुस्से में थी, इतनी क्रोध में थी, पहले तो उस कुतिया को देती थी भोजन करने के लिए, ब्राह्मण भोजन करने के बाद में भी जो ग्रास गिरे हुए थे ना, जूठे अन्न थे, उस दिन उस कुतिया को नहीं मिल पाए। उस दिन वो बेचारी भूखी रह गई, भूखी रह गई। भूख के कारण कुतिया के नेत्रों से आंसू बह रहा है, क्षुधा के कारण बड़ी पीड़ित तो हो गई और अपने पति जो बैल की जोनी को प्राप्त किए थे उनके पास में गई, नेत्रों से आंसू बहाते हुए अपने पति के पास जाकर वार्ता कर रही है, कहने लगी कि हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूं, मुझे किसी ने भी थोड़ा भी भोजन नहीं दिया, आज जो गिरे हुए अन्न और जो बचे हुए जो ग्रास थे, जो जूठे भोजन थे, वो भी मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, आज मुझे उसके कारण भूख बार बार सता रही है। अन्य दिन मेरा पुत्र दिया करता था भोजन करने के लिए, आज जूठा भोजन भी नहीं मिलने के कारण मुझे बड़ी क्षुधा पिपासा बार बार मुझे सता रही है, बार बार मुझे सता रही है। बैल ने कहा कि क्या की तूने, क्यों जूठा किया, ब्राह्मण भोजन को जूठा तो नहीं करना चाहिए था तुम्हें, मैं क्या करती, मैं बैठी थी, चंद्रावती जब गई थी पानी लेने के लिए, उस वक्त जो है ऊपर से सर्प ने भी सुगल दिया उस खीर में, मैं सोची मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, मैंने देखी उसका प्राशित तो मुझे ही लगेगा, इसके लिए मैंने जाकर के उस बर्तन को स्पर्श कर दिया
0: उसमें गुस्से में होकर के आकर के मुझे मारी, ये कमर भी मेरा टूटा, बड़ा दर्द भी हो रहा है। बैलजोनी को प्राप्त किए हुए उनके पति बोले, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ है और तुम्हारी ही पाप की बोझ उठाने के लिए मुझे बैल बनना पड़ा। जो कहा जाता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। आज तेरे पाप के कारण से ही मुझे बैल बनना पड़ा, इस कारण मैं बड़ी असक्त हूं, क्या करूं, अपने पुत्र के ही खेत में आज दिन भर मैं जा करके मुख बांध करके, मुझे कष्ट से बड़ी परेशानी हो रही थी, आज दिन भर

मुझसे जोता गया खेत, मुझे तो ऐसा लगता है आज मैं भी बड़ी भूखा हूं, मुझे भी कुछ मिला नहीं। और आज ये अपने पिता के श्राद्ध तिथि पे जो कर रहा है ना, सब व्यर्थ है, सब के सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, अपने परस्पर माता पिता का बात करते हुए सुमित श्रवण कर लिए, सुन लिए, और तत्काल माता पिता को लाकर के उन्होंने भोजन कराया। धन्य है पुत्र, हे राजन, उस समय माता पिता की ऐसी दुखी अवस्था को देख करके सुमित्र जल्दी ही वन के लिए गया, और जाकर के वन में उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं कष्ट को जानूंगा, ऐसा निश्चय करके हे धर्मराज वहां जाकर के परम धार्मिक ज्ञान वृद्ध ऋषियों से नमस्कार करके हित के वाक्य में सुमित ने प्रश्न किया, एकाग्रचित होकर के मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए। हे तपोधन, किस कर्म के फल से माता पिता इस अवस्था को प्राप्त किए? एक कुतिया जोनी को प्राप्त हुए और मेरे पिता बैल जोनी को प्राप्त किए, किस कारण से, और इस पातक से किस प्रकार से छुटकारा हो सकते हैं, ये मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय दुखी सुमित के इस आर्त वचन को सुनकर के सर्वतपा नाम के एक ऋषि बड़ी करुण युक्त होकर के उन्होंने कहा, सुमित देख, माता पिता की मुक्ति के लिए तुम्हें एक समय तुम्हारे माता पिता अपने गृह कार्य में माता भाव से ऋतु धर्म को प्राप्त किए हुए उस समय में उन्होंने घर के कार्य करती रही, सब बर्तन को स्पर्श किया, जिसके कारण से तुम्हारी माता जो है कुतिया जोनी को प्राप्त की, और उसी स्पर्श दोष के कारण से तेरे पिता बैल जोनी को प्राप्त हुए। तुम इससे मुक्त होना चाहते हो ना, तो ऋषि पंचमी व्रत तुम कराओ, मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। 7 वर्ष तक तुम आचरण धर्म को पालन करो, और करोगे तुम्हारे पिता और तुम्हारी माताएं मुक्त हो जाएंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz के तरंग के माध्यम से आपसे मिल करके श्रवण कर रहे हैं। रेडियो भोजपुरी FM में सत्संग प्रभात ऋषि पंचमी व्रत कैसा लग रहा है? कार्यक्रम संग प्रभात को आप प्रत्युत्तर जरूर दें। इसी शुभ संदेशों के साथ प्यारा सा भजन आप सबों के समक्ष, ये प्यारा सा भजन।

कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी में मानव भवन गार्ड में गार्ज कीर्तन के माध्यम से बड़े आनंद के साथ आप सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं और बड़े आनंदित होकर के उन्होंने इस व्रत को किया। व्रत करने मात्र से उनके पिता और उनकी माता की जो भोग जोनी थी सबके सब नष्ट हो गए, स्वच्छ हो गए, पावन हो गए। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को यह व्रत किया जाता है और आज बड़े ही आनंद चित्त होकर के निर्मल जल में जाकर के स्नान करना चाहिए, अपामार्ग यानी चिचड़ी से मुख को धोना चाहिए और संभव हो तो तिल आंवले लेकर के अपने केशों पे रख करके और स्नान करना चाहिए और एकाग्र चित्त होकर के अरुंधति सहित ऋषियों का पूजन करना चाहिए। जो जीवन में कष्ट परेशानी है सबके सब प्रभु समाप्त कर देते हैं। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि का पूजन करना चाहिए। जो भी वस्तुएं हो पाए इकट्ठा करके उसे दान करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने से मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। मुझे आशा विश्वास है कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको लगा होगा। कार्यक्रम सत्संग प्रभात FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। थोड़ी सी व्यस्तता के कारण आप सबों के समक्ष थोड़े पहले ही विदा लेने का प्रयास। सुनते ये रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से बने रहिए। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम सत्संग प्रभात को सुन रहे हैं। जिज्ञासा झा जी इस कार्यक्रम को रसमान कर रही हैं। अभिषेक सिंह जी हर हर महादेव लेकर के भेजे, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। राम छत्री पंडित जी प्रगति नगर से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। दीवाना पान भंडार गमरिया नहर चौक से श्याम सुंदर बैठा जी श्रवण कर रहे हैं। जिज्ञासा झा जी भी अभी सुनी बिहार से जुड़ी हुई हैं। राजकुमार माली जी प्रसौनी से जुड़े हैं। मनोज गुप्ता जी आरुषि किराना फसल यानी विश्रामपुर चार बलिरामपुर से सुन रहे हैं। राजमंगल सिंह जी नगवाल से सुन रहे हैं। अभिषेक सिंह जी गोपालगंज से सुन रहे हैं। MD अलहिम योगा पटिया से सुन रहे हैं। तेज नारायण पटेल जी कल्याणपुर से सुन रहे हैं। आस मोहम्मद अंसारी जी रामपुर टोकनी से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुरेश राउत जी लिख रहे हैं राधे राधे, ढेर सारा धन्यवाद मेरी तरफ से राधे राधे। अर्जुन कुमार अकेला जी राधे राधे गुरु जी, मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ बैकुंठ धाम बिहार संजय शाह जी के साथ इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। ढेर सारा धन्यवाद कार्यक्रम सत्संग प्रभात को सुनकर के साथ दिए, उसके लिए ढेर धन्यवाद। आने वाले सत्र में पारासर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। अकेली जितेंद्र पारासर को विदा दीजिए। सुनते रहिए रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।

0: जहां जहां राम नाम की धुन गूंजती है वहां वहां संकट हरने वाले पवन सूत हनुमान स्वयं चले आते हैं। राम के चरणों में जिनका हर पल ध्यान है, आओ आज हम सभी भक्त मिलकर उसी वीर उसी बलवंत राम भक्त हनुमान का, राम के चरणों में जिनका हर पल ध्यान है, आओ आज हम सभी भक्त मिलकर उसी वीर उसी बलवंत राम भक्त हनुमान का मिलकर गुणगान करें।
1: प्रेम से बोलिए बजरंग बली महाराज।

उपरोध कार्यक्रम सत्संग प्रभात, सत्संग प्रभात सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार, मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग।

पारासर के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
3: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
0: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
3: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
4: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगी छन हो, गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए चाचा जी, राउर लाठी हेने बाटे आ खोजे तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
4: अरे देख ना बाबी, याद से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
4: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
3: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
4: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
3: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
4: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
3: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
4: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
5: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
6: पहाड़ मजारो बड़े तराई ले सिक्नु परछा, आदि आए तराई मा पहाड़ले छेक्नु पर्छ।
7: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक, र सबैलाई मन पर्ने भोजपुरी FM 92.8।
8: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
9: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट्स में अनेकों पार्टी हॉल, जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
8: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
9: कोलार्क रिसोर्ट्स आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
8: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
9: संपर्क मोबाइल नंबर 98023-10555 और 98023-10888।
10: अरे ना जाना तो ऐसी वैसी रेडियो नानू भाई भोजपुरी ये भी मजे सुने ला, कान में लगाओ तो झूम जाला।
11: अरे खाली अपना ही सुनवा, अकेले हमारा
10: क्या सुनाई बा? चलो ना ही सुन ला।

0: अरे बाप रे भाइ, एतना सुन्दर एखन त कहू ना बाजत
1: रह सुना दी जाओ चाल कर जाओ मुकेश भाई के शरमनाथ भाई के सुना दी सब गाँव लोग के भोजपुरिया एफ एम जय सुनेला।

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पारासर के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz में शिव मेरी पूजा, शिव प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम से भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी सवेरे के 7 बजे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल छी।

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहां के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचे में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36-867, 98013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकन हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूस, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
8: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो।

0: पतिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए,
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, इहा स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया, बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले इहे बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठावा सा इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868646।
7: ए चाचा जी, राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोआ अपन लाठी।
8: अरे देख ना बाबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
7: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में
8: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है।
7: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
8: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त त समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
7: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
8: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
7: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
8: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँख अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
9: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
10: भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम से भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी सवेरे के 8 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी

0: त्यागी जी से मिलने का पता। प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
1: प्रत्येक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपाल गंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
2: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
3: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
4: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
5: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
6: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
3: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
5: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
7: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36-867, 98013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: भोजपुरी FM 92.8 MHz पर सुन रहल वाणी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
7: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
6: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
8: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
7: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, TB तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलतापूर्वक होला।
6: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
9: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 7262523, 58579 आ 98525868646।
7: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गइल बा, हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज?
10: देखी, अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
11: जी, गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
3: जी, अब अपने के साथ बा स्टोमाक्योर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
7: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्योर।
11: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्योर।
12: भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात, सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा, कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार, मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात।
13: शिव मेरी पूजा।
12: जितेंद्र पाराश्री के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
6: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
3: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
6: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
3: और 9097160602।
7: सूचना भोजपुरिया एफएम से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी, संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855368667, 9813565011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813565011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज़ आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160002।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
12: अरे देख ना बबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
11: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
12: ई हॉस्पिटल के सेवा सब है,
11: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, बल बिंदु के संपूर्ण इलाज।
12: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
11: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
12: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
11: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
12: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
13: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोर।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ झूमते रहें।

0: रक्तदान जीवन दान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में अभी सवेरे के 9 बजे।
1: नमस्ते, सुन रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ जुड़े रहिए।

शांति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। चंद्रपाराश्र के साथ में रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz में शिव मेरी पूजा, शिव प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: अरे बाप रे भाइ, यतना सुन्दर एकदम पकाउन न माजत्र लख।
1: आहा, त सुनारी आउ चाल गरा जा मुकेश भाई के, शरमनाथ भाई के, कि सुनारी सब गाव लोके। आहा, भोजपुरिया ए भेम जे सुनेला
0: चुप जाला।
2: ए बाप।

web.in.

0: पढ़े वाला लइकन के डुबलु चंपा रात में
1: हरी रही दा
2: डाउनलोड फ्रॉम dhoomweb.in
3: अनेकतामा एक यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
7: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
8: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
9: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बायकर इलाज?
10: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जब सांस दम फूलेला

0: Stoma Cure.
1: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक। पहिने कारी लगे छन हो, गोर भ गेल

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नै कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठावा सा इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7291-55466, 62-65523, 58579 आ 98525-68646।
7: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुअरी।
8: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
7: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
8: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
7: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023-10555 और 98023-10888।
9: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
10: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

నచ్చు బోధ

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके किसान यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झंझनाता का बाएकर इलाज।
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
0: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
3: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
4: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
0: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
5: ए चाचा जी राउर लाठी हेने बाटे आ खोजे तानी होने हैली रोआ अपन लाठी।
6: अरे देख ना बाबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
5: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
6: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
5: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
6: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
5: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
6: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
5: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
6: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
7: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो, गोर भगे।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तऽ गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: dhoomweb.in।
1: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ ई भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज।
2: डॉक्टर साहब देखी ना मुँह पियर आ गई बा आ हाथों झनझनाता का भयकर इलाज
3: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
1: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
4: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर यह स्टोमा क्योर।
1: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टैबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोरायसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में
8: प्रत्येक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार
6: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में
8: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 9097160002।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोर भगेल।

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहां के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: कहो साली जी, कहाँ की तैयारी बाहो?
9: खतरा हुआ मुझे जा, मैंने तैयार ना होती।
8: ओहो।

0: काहे के लगलू है साजे सवारे
1: मने तैयार ना होके
0: अरे जल्दी होखा जतरू माई

0: आज भाव हो जाए दो
1: डाउनलोड धून वेब डॉट इन
2: भोजपुरी आवाज भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz
3: करी खूनदान दी जीवन दान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में अभी सवेरे के 10 बजे
4: नमस्ते आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8 सुनते रहो सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: बढ़िया क्रीम नहीं यूज करी थी। ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहां के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज।
1: डॉक्टर साहब देखी ना मुँह पियर आ गई बा अहा तो झंझनाता का बाएकर इलाज
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
0: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
3: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आ पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
1: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
0: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टैबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में
7: प्रत्येक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में
8: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971602।
9: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
10: अरे देख ना बाबी यार से कुछ लगते नहीं छे भगवान तो हटाए सदा खुश रखे।
9: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केदिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
11: ये हॉस्पिटल के सेवा सब
9: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज जल बिंदु के संपूर्ण इलाज
11: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
9: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज
11: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज
9: नोट कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
11: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
12: अरे वाह भौजी अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोर भगे।

0: पटिया क्रीम नै युज करै छी। ई तऽ गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट्स में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट्स आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: बहुत सकरे में हम और तनी बाहर जन खाना निकाल के रखा था
1: खाना चाहिए चाहे खाना
0: अरे हाई का खाना मत रहा कोई लोग

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता कारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्योर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्योर।
8: गुजरात प्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगी छन हो गोर।

0: गोरिया क्रीम नै युज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया, बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201-55466, 62-5523, 58-579 आ 98-525-68-46।
7: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुअरी।
8: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल, जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
7: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
8: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
7: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023-10555 और 98023-10888।
9: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
10: सजन रेडियो बजाइयो बजाइयो बजाइयो तारा
11: भोजपुरिया FM
10: बजाइके सभी को मचाइयो तारा।
11: यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz, द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी सवेरे के 11 बजे।
3: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: मास्टर निर्गुणों के भाव लगा दी का
1: ना बे आश्रय दे
2: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के

0: और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट्स में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
1: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
0: क्लार्क रिसोर्ट्स आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
1: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कांटेक्ट करें।
2: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्योर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855036867, 9813565011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813565011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाय कर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोर।

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचे में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: मिस्र के ते का कहले हा?
1: जन्म चैलेंज करा जवानी के प्यार में बानी ट्रेंड हो तोहरा जैसन आइटम के कितना बजवले बानी बैंड हो
0: अरे अच्छा मिया।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी दोपहर के 12 बजे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रुप में।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए,
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोर।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब,
0: तहन आप दोसर नहि बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी, संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36 867, 98013 65 011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65 011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भयकर इलाज
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोर।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल में जाए जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सारेगामा कारवा, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: रक्तदान जीवन दान टाइम से भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी दोपहर के 1 बजे।
2: फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया FM 92.8।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
6: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करे छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक टा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर, बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर वीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया FM।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: 92.8 फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया एफएम।

0: करी खूनदान दी जीवन दान टाइम चेक भोजपुरी FM 92.8 MHz में
1: अभी दोपहर के 2 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: छुआ, दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गीतवा।
1: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
2: डाक्टर साहब देखी न, मुँह पियर आ गई बा, अहाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
3: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
4: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
5: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
2: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
4: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
8: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
6: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
8: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 9097160602।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, उसने कारी लवी सुन हो गोर।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहां के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जाय।

0: अलग पैकेज तैयार किया गया है।
1: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
0: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
2: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-6511। वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर, वीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा, नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जो सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जो 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्योर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्योर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करे छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक निश्चित उपहार दिल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36-867, 9813-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भयकर इलाज
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोर।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात, आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत, आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत, आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी दोपहर के 3 बजे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भगे।

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट्स में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी

0: प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855036867 9803065011 वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर वीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
1: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: डाक्टर साहब देखी न मुँह पियरा गई बा आहा तो झंझनाता का बाएकर इलाज
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी
3: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स
4: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर जौन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
1: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
3: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं परहेज करे नहीं वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टैबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में
8: प्रत्येक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार
5: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में
8: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
9: अरे वाह भौजी अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोर भगे

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे ताहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात और तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध है गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक निश्चित उपहार दिल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667 98013 65011 वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ झूमते हैं।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बायकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्योर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्योर।
8: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो, गोड़ भर

0: गोरिल्ला क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे ताहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: आज आए तराईमा पहाडले छेक्नु पर्छ।
1: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8।
2: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में।
3: अभी दोपहर के 4 बजे।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोर।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।

0: चर्च आदर्श नगर वीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
1: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ दिखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
12: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
11: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले इहे बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
13: उठावा सा इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
12: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
11: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
14: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868046।
15: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल।

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल में जाए जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: ये है भोजपुरिया FM 92.8 FM FM सुनते रहो सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भगे।

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज। गीत संगीत के साथ जुड़े रहें।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: रक्तदान जीवनदान टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी संझिया के 5 बजे।
3: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: ए चाचा जी राउर लाठी हेने बाटे आ खोजतानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
11: अरे देख ना बाबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
10: चली चाचा जी रोरा के ले चलतानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
11: ई हॉस्पिटल के सेवा सब है,
10: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
11: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
10: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
11: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
10: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
11: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
12: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगी छन हो, गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए,
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
12: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
11: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
13: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
12: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
11: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
14: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868646।
15: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर वीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अभी आपने सुना था नहीं?
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाय और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाय, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160002।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लवी छन हो गोर।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए,
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: रक्तदान जीवनदान टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी संध्या के 6 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भगे।

0: वाला क्रीम नहि यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: नमस्ते।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूस, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करे छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए चाचा जी, राउ लाठी है ने बाटे आ खोजे तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
4: अरे देख ना बाबी, याद से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
4: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है,
3: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
4: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त त समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
3: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
4: बच्चा के आंख के संपूर्ण इलाज।
3: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
4: आंख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
5: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी, संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: और भी आपने सुना था नहीं कुछ बुरी
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टैबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160002।
6: डॉक्टर साहब देखी ना मुंह पियर आ गई बा आ हाथों झनझनाता का बाएकर इलाज
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर जौन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201-55466, 62-5523, 58-579 आ 98-525-68-46।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98-550-36-867, 98-013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98-013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: करी खुनदान दी जीवनदान टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी सजिया के 7 बजल।
3: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

अकारण करुणा वरुणालय परात पर ब्रह्म श्री कृष्ण की भागवत छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज। पावन मंगलमय वेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। मैं आप लोगों का स्नेही जितेंद्र पारासर और अभी आप रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात में ऋषि पंचमी व्रत कथा को। बड़े आनंद चित्त होकर के अपने जीवन में जो भी पाप ताप संताप होते हैं इसे परिष्कृत करने के लिए हमारी माताएं ऋषि पंचमी व्रत को बड़े आनंद के साथ करते हैं। सप्तऋषियों का पूजन करके यथाभक्ति शक्ति के अनुसार जो भी वस्तुएं होती है उसे समर्पित करके पुण्य के भागी बनते हैं। आइए हम सब मिलकर के भविष्य पुराण से लिया हुआ यह ऋषि पंचमी व्रत कथा को हम सब मिलकर के श्रवण करें।

एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था कि हे देवेश, ये सब पाप ताप संताप कैसे समाप्त होते हैं? जीवन में जाने अनजाने में पाप ताप संताप तो होते रहते हैं, लेकिन समाप्त कैसे होता है? वो पंचमी कैसी है? ऋषि पंचमी नाम, उसकी संज्ञा कैसे प्राप्त हुआ? किस तरह स्त्रियां सभी पापों को दूर कर लेती है, समाप्त कर लेती है? सो हम सुनना चाह रहे हैं, आप कृपा पूर्वक बतलाइए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं, अनेक प्रकार के पाप हैं जीवन में। इस व्रत को करके और स्त्रियां किस प्रकार से मुक्त हो जाती हैं? भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंदित हुए। तूने सिर्फ ये प्रश्न अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए तूने प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंदित हो गए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, राजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में जो भी वर्तनी स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त करती है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्य नरक में ही जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किस प्रकार से राजस्वला स्त्री को गृह में निषेध किया गया है, उतने दिन तक गृह कार्य के लिए किस प्रकार से निषेध किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र राजस्वला स्त्री को घर के स्पर्श से दूर ही रखें। कहा कि ये है क्या, राजस्वला है क्या? उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व समय में वृत्रासुर को मारने से, इंद्र को ब्रह्म हत्या को प्राप्त हो गई, धर्मराज के पास में गए, उस हत्या से दुखी होकर के इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के पास गए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान करके प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। वो जो ब्रह्म हत्या लगा हुआ था, उसको ब्रह्मा जी महाराज शुद्धि कर दिए। और इतना ही नहीं, उस ब्रह्म हत्या को उन्होंने चार भाग में विभाजन किया, चार जगह पर विभाजन किए ब्रह्मा जी महाराज। प्रथम भाग जो है अग्नि के प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग जो है नदी के प्रथम जल में, और तृतीय भाग पर्वत पे, और चतुर्थ भाग स्त्रियों के रज में उन्होंने विभाजन कर दिया। ये ब्रह्म हत्या जो है चार भाग में विभाजन कर दिए। ये ब्रह्म हत्या जो है, जो स्त्रियों को चार दिन के लिए अशुद्धावस्था आता है, ब्रह्मा जी ने एक भाग उसमें भी दिया ब्रह्म हत्या का। ब्रह्मा जी महाराज का यह आज्ञा है कि चतुर्थ वर्ण को उचित है कि राजस्वला स्त्री को सदा दूर ही रखें। कहा इनका स्वरूप क्या होता है, तो प्रथम दिन अशुद्धावस्था में ये रजस्वला चंडावलिनी होती है, और द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी होती है, तृतीय दिन धोबिन होती है, और चतुर्थ दिन जाकर के पवित्र हो जाती है। ऐसे इस व्रत में चतुर्थ दिन तक अशुद्धावस्था बतलाया। स्त्रियों के लिए जो अशुद्धावस्था आता है चार दिन के लिए आता है, उसके बाद में पवित्र हो जाती है। महाराज, उस वक्त ज्ञाना अवस्था में, यानी जान करके या अनजान से
यदि स्पर्श किया जाता है तो उससे पाप लगता है, उस पाप ताप संताप को नष्ट करने के लिए ऋषि पंचमी व्रत को अवश्य करना चाहिए, जो सभी पापों को दूर करके, उपद्रवों को नाश करके, समाप्त करके ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां अवश्य करें। युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं, क्या इसका पुराणतम कोई कथा? कहा कि हां, एक इतिहास में बता रहा हूं, उसे तुम श्रवण करो, उसे तुम सुनो।

0: पुरा कृतयुगे राजा विदर्भायां बभूवः।
1: एक इतिहास बता रहे हैं
2: क्या
1: कि पूर्व शतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुए, सेनजीत ब्राह्मण आदि सबको बड़ी रक्षा करते थे। उनके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण थे, उनका नाम सुमित्र था और वह सभी प्राणियों के हित के लिए दिन रात अपने जजमनका में घूमते थे, अपने कुटुंब का पालन करते थे। उनकी पत्नी का नाम जयश्री था, बड़ी साध्वी, पतिपरायणा, सुहृद जनों की सेवा करने वाली। महाराज एक दिन की बात है, बड़े चिंतातुर होकर के सेवा कर रही थी, बड़ी दुखी मन से सेवा कर रही थी। ऋतुमती हुई देख करके भी, रजो धर्म युक्त होने पर भी गृह कार्यों को करती रही। अशुद्धावस्थाएं आया तब भी अपने घर की कार्य करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त करने के पश्चात उसने घर का कार्य करती रही। उसने बर्तन को भी स्पर्श किया। बहुत काल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जयश्री की मृत्यु हो गई। पति के कालवश परलोक प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह से स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए और जो भार्या जयश्री थी, राजस्वला संपर्क दोष के कारण से उनका अगला जो जन्म मिला वह कुतिया बनी और जो सुमित्र उनका पति थे, सिर्फ स्पर्श के दोष मात्र से उनको बैल पड़ना पड़ा, वो बैल बने। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वशभूत हो गए, जीवन चलाना प्रारंभ किए। त्रियक जोनी को प्राप्त हो गए महाराज। अपनी जाति का स्मरण हुआ उस धर्म के बदौलत। हुआ क्या कि अपने पुत्र के ही घर में बैल बने और जो कुतिया बनी उनकी मां उनकी ही दरवाजे पर रहती थी। जन्म के पाप का स्मरण हुआ। जो सुमित्र थे ब्राह्मण देव, उनकी बेटी का नाम था सुमित्र, अपने गुरु की बड़े सेवा करते थे, बड़ों का आदर सम्मान करते थे, धर्म परायण आते थे, अतिथि का सेवा करते थे, सत्कार करते थे, जो भी घर में आ जाता सबको सत्कार करते थे, सबका सम्मान करते थे। एक दिन उनकी पिता जो मर गए थे, अब उनको क्या पता कि मेरे पिता ही बैल जोनी को प्राप्त करके मेरे घर में रह रहे हैं, उनको पता नहीं था। उन्हीं की संबत तिथि आई, श्राद्ध तिथि आई, बड़े उल्लास होकर कि अपने पिता के उस श्राद्ध तिथि पे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अपनी पत्नी से कहे कि काम करो, तुम तत्काल ही खूब अच्छे से सबको व्यवस्थित करके और ब्राह्मण भोजन के लिए तुम व्यवस्थित करो, पकवान तैयार करो, ब्राह्मण देवलोक को जाकर के हम निमंत्रण दे करके आ रहे हैं। मेरे पिताजी का श्राद्ध तिथि है ना, ब्राह्मणों को जिमाया जाएगा, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, तुम जाकर के अच्छे से पकवान तैयार करो। उनकी पत्नी सुनी और पकवान तैयार करना प्रारंभ किया। उनकी पत्नी का नाम चंद्रावती था। हुआ क्या, वो कुतिया जो इनकी सासू मां थी वो सामने में बैठी थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ब्राह्मण देव आने वाले हैं भोजन करने के लिए, उसी वक्त खीर को बड़े सुंदर से निकाल करके थाली में सजा दी कि ब्राह्मण देव आएंगे और आकर के बड़े प्रेम भाव से इससे भोजन ग्रहण करेंगे। क्यों? मेरे ससुर जी का आज श्राद्ध तिथि है ना, बड़ी श्रद्धा है मन में, और श्रद्धा से ही श्राद्ध कर्म होता है। बड़ी श्रद्धा के साथ सुमित भी गया ब्राह्मण के समक्ष, जाकर के कहा कि आप लोग मेरे निमंत्रणा को स्वीकार करिए, मेरे घर चलिए, भोजन को ग्रहण करिए। ब्राह्मण देव निमंत्रणा को स्वीकार किए, उधर से ब्राह्मण देव चले, इधर चंद्रावती बड़े सुंदर से खीर को निकाली। उसी वक्त एक सर्प ने ऊपर से 20 उस खीर में डाल दिया, उगल दिया 20, और जैसे ही उस 20 को उगलते हुए उस कुतिया ने देखी, स्मरण था, पूर्व जन्म का स्मरण था, उसने कहना प्रारंभ किया कि यदि इसे ब्राह्मण लोग खाएंगे तो मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और मैं देख करके चुप रह जाऊं तो ये मेरे लिए उचित नहीं है। जीवन में थोड़े से चूक हो गए, ये कुतिया के जोनी प्राप्त हुआ। आज मुझसे ब्राह्मण सामने में ब्राह्मण का हत्या हो जाएगा तो पता नहीं मुझे कितने दिन तक ये भोगना पड़ेगा, ये पता नहीं है। उस कुतिया ने जाकर के, अभी चंद्रावती आ ही रही थी, उस कुतिया ने जाकर के खीर के उस पात्र में उस कुतिया ने मुख को डाल दिया, मुख लगा दी, जूठा कर दी। उधर से जब चंद्रावती आई, महाराज पके हुए पकवान को देख करके कुतिया ने मुख लगा दी, स्पर्श कर दिया। अब इस कुत्ते के जूठ को मैं ब्राह्मण को कैसे भोजन करा सकती, बड़ा गुस्सा आया। बड़े प्रेम भाव से खटकर के उन्होंने पकवान को तैयार किया था और कुत्ते जूठ कर दे, ये तो अच्छी बात नहीं। उनको गुस्सा आया और जलते हुए लकड़ी को लेकर के उन्होंने उस कुत्ते को कमर के ऊपर प्रहार किए, मारे। महाराज मानो कि कमर टूट गया हो। कुतिया चिल्ला करके भागी वहां से, सबको, सब बर्तन को जो है पकवान को उन्होंने सबको ले जाकर के भीग दिया, और पुनः सफाई करके और पुनः खीर को उन्होंने बनाया, पकवान तैयार की। महाराज चंद्रावती इतने गुस्से में थी, इतने क्रोध में थी, पहले तो उस कुतिया को देती थी भोजन करने के लिए, ब्राह्मण भोजन करने के बाद में भी जो ग्रास गिरे हुए थे ना, जूठे अन्न थे, उस दिन उस कुतिया को नहीं मिल पाए। उस दिन वो बेचारी भूखी रह गई, भूखी रह गई। भूख के कारण कुतिया के नेत्रों से आंसू बह रहा है, क्षुधा के कारण बड़ी पीड़ित तो हो गई, और अपने पति जो बैल की जोनी को प्राप्त किए थे उनके पास में गई, नेत्रों से आंसू बहाते हुए अपने पति के पास जाकर के वार्ता कर रही है, कहने लगी कि हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूं, मुझे किसी ने भी थोड़ा भी भोजन नहीं दिया, आज जो गिरे हुए अन्न और जो बचे हुए जो ग्रास थे, जो जूठे भोजन थे, वो भी मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, आज मुझे उसके कारण भूख बार बार सता रही है। अन्य दिन मेरा पुत्र दिया करता था भोजन करने के लिए, आज जूठा भोजन भी नहीं मिलने के कारण मुझे बड़ी क्षुधा पिपासा बार बार मुझे सता रही है, बार बार मुझे सता रही है। बैल ने कहा कि क्या की तूने, क्यों जूठा किया, ब्राह्मण भोजन को जूठा तो नहीं करना चाहिए था तुम्हें, मैं क्या करती, मैं बैठी थी, चंद्रावती जब गई थी पानी लेने के लिए, उस वक्त जो है ऊपर से सर्प ने विष उगल दिया उस खीर में, मैं सोची मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, मैंने देखी उसका प्रायश्चित तो मुझे ही लगेगा, इसके लिए मैंने जाकर के उस बर्तन को स्पर्श कर दिया, उसमें गुस्से में होकर के आकर के मुझे मारी, ये कमर भी मेरा टूटा, बड़ा दर्द भी हो रहा है। बैलजोनी को प्राप्त किए हुए उनके पति बोले, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ है और तुम्हारे ही पाप के बोझ उठाने के लिए मुझे बैल बनना पड़ा। जो कहा जाता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। आज तेरे पाप के कारण से ही मुझे बैल बनना पड़ा, इस कारण मैं बड़ी अशक्त हूं, क्या करूं, अपने पुत्र के ही खेत में आज दिन भर मैं जा करके मुख बांध करके, मुझे कष्ट से बड़ी परेशानी हो रही थी, आज दिन भर मुझसे जोता गया खेत, मुझे तो ऐसा लगता है आज मैं भी बड़ी भूखा हूं, मुझे भी कुछ मिला नहीं, और आज ये अपने पिता के श्राद्ध तिथि पे जो कर रहा है ना, सब व्यर्थ है, सब के सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, अपने परस्पर माता पिता का बात करते हुए सुमित श्रवण कर लिए, सुन लिए, और तत्काल माता पिता को लाकर के उन्होंने भोजन कराया। धन्य है पुत्र, हे राजन, उस समय में माता पिता की ऐसी दुखी अवस्था को देख करके सुमित्र जल्दी ही वन के लिए गया और जाकर के वन में उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं कष्ट को जानूंगा, ऐसा निश्चय करके हे धर्मराज वहां जाकर के परम धार्मिक ज्ञान वृद्ध ऋषियों से नमस्कार करके हित के वाक्य में सुमित ने प्रश्न किया, एकाग्रचित होकर के मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए। हे तपोधन, किस कर्म के फल से माता पिता इस अवस्था को प्राप्त किए, एक कुतिया जोनी को प्राप्त हुए और मेरे पिता बैल जोनी को प्राप्त किए, किस कारण से और इस पातक से किस प्रकार से छुटकारा हो सकते हैं, ये मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय दुखी सुमित के इस आर्तवचन को सुनकर के सर्वतपा नाम के एक ऋषि बड़ी करुण युक्त होकर के उन्होंने कहा, सुमित देख, माता पिता की मुक्ति के लिए तुम्हें एक समय तुम्हारे माता पिता अपने गृह कार्य में माता भाव से ऋतु धर्म को प्राप्त किए हुए उस समय में उन्होंने घर के कार्य

कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से बड़े आनंद के साथ आप सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं और बड़े आनंद जित होकर के उन्होंने इस व्रत को किया। व्रत करने मात्र से उनके पिता और उनकी माता की जो भोग जोनी थी सबके सब नष्ट हो गए, स्वच्छ हो गए, पावन हो गए। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को यह व्रत किया जाता है और आज बड़े ही आनंद चित्त होकर के निर्मल जल में जाकर के स्नान करना चाहिए, अपामार्ग यानी चिचड़ी से मुख को धोना चाहिए और संभव हो तो तिल आंवले लेकर के अपने केशों पे रख करके स्नान करना चाहिए और एकाग्र चित्त होकर के अरुंधति सहित ऋषियों का पूजन करना चाहिए। जो जीवन में कष्ट परेशानी है सबके सब प्रभु समाप्त कर देते हैं। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि का पूजन करना चाहिए। जो भी वस्तुएं हो पाए इकट्ठा करके उसे दान करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने से मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। मुझे आशा विश्वास है कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। थोड़ी सी व्यस्तता के कारण आप सबों के समक्ष से थोड़े पहले ही विदा लेने का प्रयास। सुनते रहिए रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से, बने रहिए कार्यक्रम सत्संग प्रभात में जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात को सुन रहे हैं जिज्ञासा झा जी, इस कार्यक्रम को रसमान कर रही हैं, अभिषेक सिंह जी, हर हर महादेव लेकर के भेजे

लिए ढेर सारा धन्यवाद। रामछत्री पंडित जी प्रगति नगर से इस कार्यक्रम को सुन रहे, दीवाना पान भंडार गमरिया नहर चौक से श्याम सुंदर बैठा जी श्रवण कर रहे हैं, जिज्ञासा झा जी भी अभी सुनी बिहार से जुड़ी हुई हैं, राजकुमार माली जी प्रसौनी से जुड़े हैं, मनोज गुप्ता जी आरुषि किराना पसल यानी विश्रामपुर चार बलिरामपुर से सुन रहे हैं, राजमंगल सिंह जी नगवाल से सुन रहे हैं, अभिषेक सिंह जी गोपालगंज से सुन रहे हैं, एमडी अलहिम योगापटी ओझोलिया से सुन रहे हैं, तेज नारायण पटेल जी कल्याणपुर से सुन रहे हैं, आस मोहम्मद अंसारी जी रामपुर टोकनी से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुरेश राउत जी लिख रहे हैं राधे राधे, ढेर सारा धन्यवाद मेरी तरफ से राधे राधे, अर्जुन कुमार अकेला जी राधे राधे गुरुजी, में नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ बैकुंठ धाम बिहार संजय शाह जी के साथ इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं, ढेर सारा धन्यवाद कार्यक्रम सत्संग प्रभात को सुनकर के साथ दिए, उसके लिए बाद आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे, तब तक लिए जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए, सुनते रहिए रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से बने रहिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।

जहां राम नाम की धुन गूंजती है, वहां वहां संकट हरने वाले पवनसूत हनुमान स्वयं चले आते हैं। राम के चरणों में जिनका हर पल ध्यान है, आओ आज हम सभी भक्त मिलकर उसी वीर उसी बलवंत राम भक्त हनुमान का मिलकर गुणगान करें। प्रेम से बोलिए बजरंग बली महाराज।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
3: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बायकर इलाज
6: देखी। अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
10: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजे तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
11: अरे देख ना बाबी, याद से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
10: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी, राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
12: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है,
10: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
12: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
10: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
12: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
10: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
12: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँख अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
13: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
14: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
13: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
15: उठावा सा इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
14: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
16: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
17: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7290955466, 7262523, 58579 आ 98525868046।
18: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, जाए, किसी होटल में जाए, जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर, बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा, नेपाल।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात सत्संग प्रभात सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार सब करेगा वही जो है पालनहार मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग।

पारस्त्र के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में
1: अभी संजिया के 8 बजे
2: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेड गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
12: अरे देख ना बाबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटाए सदा खुश रखे।
11: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
12: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है,
11: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
12: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
11: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
12: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
11: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
12: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
13: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक निश्चित उपहार दिल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
0: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरी।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
12: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
11: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
13: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
12: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
11: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
14: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201-55466, 62-5523, 58-579 आ 98-525-68-46।
15: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगी छन हो, गोर भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013665011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013665011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा।

0: जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन,
1: प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूर्व सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूर्व राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
3: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160।
4: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
5: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
6: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
7: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
8: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
6: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान, भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी रुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: रक्तदान जीवनदान टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी रात के 9 बजे।
3: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अभी आपने सुना था नहीं।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भाएकर इलाज
6: देखी। अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल छी।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार।

0: और भी आपने सुना था नहीं कुछ बुरिया था 92.8 मेगा
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टैबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया का पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160002।
5: डॉक्टर साहब देखी ना मुंह पियर आ गई बा आ हाथों झनझनाता का बाएकर इलाज
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्यूर यह स्टोमा क्यूर
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोर भ गेल छी।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले इहे बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868646।
7: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुवारी।
8: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुवारी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल, जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का बीरगंज 14 बहुवारी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल, जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का बीरगंज 14 बहुवरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल, जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का बीरगंज 14 बहुवरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल, जिसमें आप 20 आदमी से लेकर

सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का वीरगंज 14 बहुवरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का वीरगंज 14 बहुवरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का वीरगंज 14 बहुवरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का

त्रिगंज 14 बहुवरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेकर 2000 आदमी तक का